0: दिल चीर कर सामने रख देंगे।
1: पहले मुझे इस तक पहुंचना है।
0: और इस तक पहुंचने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा।
1: कहां?
0: मोहब्बत में सवाल नहीं किए जाते। आओ, कम इन।
1: किरण, तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे पीके तक ले जाओगी। ये तुम मुझे कहां?
0: मैंने कहा था ना, मोहब्बत में सवाल नहीं किए जाते।
1: ये
0: जवाब मिल गया।
1: किरण, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि इस प्यार का अंजाम क्या होगा।
0: अंजाम?

0: चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: Yes.
1: योगी?
0: That's right.
1: Welcome.
0: Thank you.
1: Welcome.